अशोक भोसले के स्वर में जयशंकर प्रसाद की ये रचना, संगीत जयदेव का था। रंग तरंग कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है महादेवी वर्मा की रचना, स्वर छाया गांगुली।

0: डैडी फिल्म का ये गीत था। तलत अजीज की आवाज थी, सूरज सनीम के बोल राजेश रोशन की तर्ज थी। विविध भारती रंग तरंग, एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

गुलजार के बोल थे। वादा एल्बम से ये गीत था, संगीत उस्ताद अमजद अली खान साहब का था। अब भूपिंदर की आवाज गूंज रही है गुलजार के बोल।

0: जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
0: और अब जाने माने गायक सोनू निगम को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए पेश कर रहे हैं ये गाना।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आंखें हैरान सी रह जाती हैं।

0: दिल से फिल्म का ये गीत आपने सुना, एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बॉर्डर फिल्म का ये गीत जावेद अख्तर के बोल थे, अनु मलिक की तर्ज थी, रूप कुमार राठौड़, सोनू निगम और साथियों की आवाजें थी। आज है सोनू निगम का जन्मदिन और विविध भारती पर यादों की महफिल कार्यक्रम में उनके गाने हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
2: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरण भवन सू आयो विनायक करो ये नसीती विन धरी मारा दिलीप सेन जीव धारी याद।
1: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
3: ओले, ओले, ओले, ओले, ओले, ओले।
0: परदेश फिल्म का गाना सोनू निगम, हेमा सरदेसाई और शंकर महादेवन। आनंद बख्शी, नदीम श्रवण।

परदेश के बाद अब थ्री इडियट्स फिल्म का गाना सुनो निगम शान और स्वानंद किरकिरे। गीत स्वानंद किरकिरे, संगीत शांतनु मोहित्रा। दिन के 12:39 और विविध भारती पर ऑल इज वेल।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान

0: तीनों दिखा रहे हैं। सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
1: और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
4: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
6: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
4: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: हाय हाय।
4: सुनो निगम और अनुराधा पौडवाल फिल्म का नाम है तुम बिन।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी हो गई। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिल चाहता है फिल्म का ये गीत आपने सुना, और इसी के साथ अब आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म होता है।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए। 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिवीजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिवीजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं, जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया। अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम की आज की इबारत हमने विविध भारती के सोशल मीडिया पेज पर यानी फेसबुक पर पोस्ट कर दी है और आप सभी ने पढ़ भी ली है। ये इबारत है, कुछ दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं होते, वो राह भी दिखाते हैं। उस दिन राह दिखाने वाले एक दोस्त ने कहा था, उतना ही उपकार समझ तू जितना साथ निभा दे। बात इशारों वाली थी पर फौरन समझ में आ गई थी। कुछ बहारें बीती और इस एहसास को जीना भी पड़ गया। एक सुरमई शाम थी, उस दिन वो आखिरी बार मिली। वो जता गई कि दुनिया परछाइयों की है, भरी भीड़ में खाली तन्हाइयों की है। तब से आंखें नहीं रह गईं, थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी बन गईं। प्यार करने वाले तो बद्दुआ भी नहीं दे सकते, जैसे बख्शी साहब ने लिखा था, मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। जिस दिल में बसा होता है प्यार, वो यही कहता है, चांद धुंधला सही ये गम नहीं है मुझे, तेरी रातों पे रातों का साया ना हो। शाम की तन्हाइयां अक्सर उसकी याद दिलाती हैं और तब होता है एहसास, मैं शायद एक ख्वाब था जिसे उसने अपनाया ही नहीं। एक छोटी सी कहानी हमने पोस्ट की आज की इबारत के तौर पर। इस कहानी से आपको ये समझ में आता है कि दो लोगों का साथ निभ नहीं पाया। एक के हिस्से में उदासी आई, शायद दूसरे के हिस्से में भी आई ही होगी। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और बहुत सारे श्रोताओं ने ये कहा है कि आज की इबारत बता देती है कि गाने कौन से शामिल होने वाले हैं बाकायदा। दरअसल गानों की पंक्तियां इस कहानी की पंक्तियां जो बन गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर इस गाने के साथ। क्या तो शानदार ओपनिंग म्यूजिक है इस गाने का, जो मेरी आवाज के पीछे आपको सुनाई दे रहा है। किस फिल्म का है गाना ये तो जरूर बताइएगा, लेकिन साथ में ये भी बताइए दो बातें। एक तो ये कि किस जगह की शाम आपको बहुत ज्यादा पसंद है। लोग शामें अवध और सुबह बनारस की बात करते हैं, आपके लिए किस जगह की शाम मायने रखती है। और दूसरी बात, क्या जिंदगी में आपके साथ भी ऐसा हुआ कि किसी एक मोड़ पर किसी का साथ छूट गया और रह गई केवल उदासी।

और जब शाम की बात चली तो बहुत सारे श्रोताओं की बातें आई हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं तो हर शाम दिल लुभाने वाली होती है, लेकिन पुरी की जो शाम है, पुरी के समुद्र तट की शाम, सूर्यास्त का नारंगी रंग बहुत ही मनमोह लेता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुझे हमारे शहर उज्जैन की शाम पसंद है, क्योंकि 36 साल की सेवा के बाद मुझे अपने शहर वापस लौटने का मौका मिला है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती है कि कोच्ची की शाम पसंद है, हमारे छत से हम सूर्यास्त देख सकते थे, सूरज समुद्र के नीचे जा रहा था, धीरे धीरे खूबसूरत प्रकाश फीका हो रहा था। इसके अलावा लेकिन फिल्म का ये गाना है, इसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं कि गुलजार के ये बोल, सुरेश वाडकर की आवाज, हृदयनाथ मंगेशकर का ये संगीत है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि भाई हमारे लखनऊ की शाम का कोई जवाब नहीं है। एक और श्रोता है जो ये लिखती है कि जिसके साथ शाम होती है वो जब भी दूर होकर भी दूर जाकर भी दूर नहीं होता है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मुझे कक्षा 8वीं की शाम बहुत अच्छी लगती थी, जब मैं एनसीसी के कैंप में भोपाल गया था और कल्चरल प्रोग्राम हुआ करते थे। इसके अलावा एक श्रोता की बात यह है कि उन्हें सुबह और शाम दोनों ही अपने शहर की अच्छी लगती हैं, यानी उनके शहर की ही सुबह और उनके शहर की ही शाम उन्हें अच्छी लगती हैं, घर पर अच्छा लगता है। एक श्रोता और हैं जिनका कहना है कि समंदर के किनारे जो शाम बीते, डूबता सूरज क्षितिज को सुनहरा करता है, वो देखना बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अब तो हर शाम मुझे अधूरी सी लगती है। और इसके अलावा लखनऊ की शाम भूलने वाली नहीं है, ये बात भी एक श्रोता ने लिखी है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं की बातों के बीच में एक बात ये भी है कि एक श्रोता अपने दफ्तर से कार्यक्रम सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम का आनंद भी ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए, जो कि आज की इस इबारत का हिस्सा था जिसे हमने गानों के बोलों के इशारों से सजाया था, और ये जो गाना है ये कहता है कि थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी और एक कहानी, यानी जिंदगी की उदासी को और आंखों के भीग जाने के एहसास को ये गाना बयां करता है। पिछली बार हाल ही में किस बात पर आपकी आंखें भीग गई थी, ये बात बताइएगा। और साथ में ये भी कि इस गाने में ये जो नाजुक आवाज है, दिल में उतर जाने वाली आवाज, ये किस गायिका की है।

एक श्रोता लिखते हैं कि पिछली बार तब बहुत रोना आया था जब मैं भोपाल में लाल परेड ग्राउंड पर आर्मी की भर्ती की परीक्षा देने गया था और केवल 20 सेकंड से मैं रह गया था। एक और श्रोता है जो कहती है कि शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, जुगल हंसराज वाली फिल्म मासूम और गायिका आरती मुखर्जी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उन्हें आरती मुखर्जी के साथ कोलकाता में चाय पीने का अवसर प्राप्त हुआ था, ये उनके लिए बहुत ही यादगार लम्हा है। एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि कुछ लोग जो अब साथ नहीं हैं उनकी याद में आंखें नम हो जाती हैं। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि मैं जब भी फूलों का तारों का गीत सुनती हूं तो अपने भाई को याद करके आंखें नम हो जाती हैं। बचपन की याद दिलाने वाली फेसबुक पोस्ट देखकर आंखें नम हो जाती हैं कि कितनी निस्वार्थ दोस्ती थी, आपस में खेलना, झगड़ना, फिर सुलह कर लेना। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनका ये कहना है कि जिंदगी कितनी अजीब है, सब कुछ इतना मुकम्मल लगता है कि इंसान वक्त को वहीं रोक देना चाहता है, लेकिन शाम ढलती है वो इंसान विदा हो जाता है और चारों तरफ सन्नाटा फैर जाता है। एक और श्रोता है कहते हैं पूछिए आज हम आ गए मैदान में। बिल्कुल जी, अब तो कठिन से कठिन सवाल पूछेंगे, आइए मैदान में। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने 1983 में आई थी फिल्म मासूम ये लिखा। एक और श्रोता का कहना है कि माँ का साथ कुछ साल पहले छूटा, दुनिया में वीरानी छा गई, एक खालीपन है। शाम की चाय अब भी पीती हूँ पर माँ के साथ शाम की चाय की बात कुछ और थी। अब घर का वो कमरा जहां से मां की रौनकें थीं, दर्द भरा सन्नाटा पसरा रहता है। किसी का साथ जब छूट जाता है तो कितना बदल जाता है।

जीवन। एक और श्रोता लिखते हैं कि कल गुरु पूर्णिमा थी तो मन में ख्याल आया कि सबसे पहले गुरु तो माँ पापा होते हैं, बस सोचते सोचते आंखें भर आईं। तमाम श्रोताओं के इस तरह के कमेंट कुछ जज्बाती कर देने वाले, कुछ अपने दिल की बात कहने वाले, शुक्रिया आप सभी का। और पूरी इबारत की एक तरह से डोर पकड़ के जो अगला गाना हम आज के हार में मोती की तरह पिरो रहे हैं वो मुकेश की आवाज वाला ये गाना है। फिल्म का नाम और गीतकार का नाम बताइएगा।

एक श्रोता लिखते हैं कि शाम से शुरू हुई सुरमई संगीत की यात्रा, नैनों ने पानी बरसाया, दिल तोड़ दिया और दिल को समझ लिया, ये आपका अंदाज है, शुक्रिया। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सहेली फिल्म का गाना है और संगीतकार इंदिवर जी हैं। भाई संगीतकार नहीं, गीतकार इंदिवर जी हैं, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। और सहेली 1965 में आई थी, बहुत सारे श्रोताओं ने ये बात लिखी है। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने ये भी लिखा है कि उनकी लिस्ट में ये गाना शामिल था। एक श्रोता लिखते हैं कि कल रफी साहब की याद का दिन है और कम से कम 2 घंटों का कार्यक्रम होना चाहिए और आप इसे प्रस्तुत करें। बहुत शुक्रिया, रफी साहब की याद में कार्यक्रम जरूर होगा और क्यों ना आज ही से हम रफी साहब के लिए अपने दिल के जज्बात का इजहार करना इसलिए शुरू कर दें क्योंकि अभी कार्यक्रम का जो अगला गाना है वो रफी साहब की आवाज वाला ही गाना आ रहा है। एक श्रोता लिखती हैं कि प्यार कभी मरता नहीं, वो याद में बदल जाता है। याद से एक मूक ताकत हमें जीने को मजबूर करती है। कितना कुछ है दुनिया में भूलने को और कितना कुछ है दुनिया में याद करने को।

रफी साहब के प्रति अपने जज्बात का इजहार करें और आज के इस कार्यक्रम में आप बताएं कि कितना प्यार करते हैं आप रफी साहब की आवाज से, कितना मायने रखते हैं रफी साहब आपके लिए।

एक श्रोता लिखते हैं, बचपन में किसी आवाज से आरंभ हुई तो वो मरहूम सुरों के साधक मोहम्मद रफी ही थे जो अब तक दिल में बसे हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज मेरा पसंदीदा गाना है और मैं बरबस गुनगुनाता हूं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि चित्ररेखा फिल्म का ये गीत साहिर लुधियानवी, रोशन, प्रदीप कुमार, केदार शर्मा, क्या बात है, पूरे डिटेल्स आपने लिख लिए हैं। राग यमन पर आधारित गाना, सितार, सरोद और बांसुरी का बेहतरीन इस्तेमाल, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रफी साहब की आवाज रूह को छू लेने वाली आवाज है। और इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि बहुत ही सुंदर गीत है, मन रे तू काहे न धीर धरे, बचपन से सुनती आ रही हूं, कितना सुकून है इन बोलों में। एक और श्रोता, मेरे लखनऊ के घर में जिसमें मैं खेली पढ़ी, सबके शादी ब्याह हुए, भाई बहन का प्यार सब यादें रह गई, वो घर बेच दिया गया, भाई लोग फ्लैट में चले गए, बहुत रोना आ रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर बोल चित्रलेखा फिल्म का ये गाना। एक और श्रोता का कहना है कि रफी साहब की आवाज का तिलस्म कभी खत्म नहीं हुआ, इस तिलस्म का असर और ज्यादा गाढ़ा होता चला जा रहा है। एक और श्रोता का कमेंट है, सुमधुर गानों की बौछार जैसे बारिश की पहली बूंदें। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि मुकेश साहब पर आधारित दोनों कार्यक्रम बहुत अच्छे थे, दो दो बार सुना पर प्यास नहीं बुझी। इस तरह के कमेंट्स हैं। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं और वो गाना सुनवा रहे हैं जो इबारत में शामिल था लेकिन मुखड़े के रूप में नहीं, बल्कि गाने की बीच की पंक्तियों को शामिल किया था। फिर भी फिल्म संगीत के दीवाने हमारे श्रोता, विविध भारती परिवार के हमारे सदस्य, आप सभी ने इस गाने को पहचान लिया था। और ये गाना आपको सुनवा रहे हैं, बताइएगा फिल्म का नाम और ये

की इस फिल्म का कौन सा गाना आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा रहा या कौन से गाने हैं जो सबसे ज्यादा पसंदीदा रहे हैं। और इसके अलावा ये भी बताइए कि आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके होंठों पर सजा है।

भाई ये गाना कितने जल्दी खत्म हो गया ऐसा लगता है। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मेरे होंठों पर एक ही गीत जहन में आ रहा है, नफनकार कोई तुझसा तेरे बाद आया। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि संगीत के प्रति मेरे लगाव की शुरुआत मोहम्मद रफी से हुई है। मोहम्मद रफी सिर्फ गायक नहीं बल्कि भारतीय संगीत की वो रूह है जिसने करोड़ों दिलों को धड़कना सिखाया। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा कि उपकार का जो गाना है, सारे गाने बड़े अच्छे लगते हैं और आज सुबह से बारिश का लुत्फ हम ले रहे हैं। और एक श्रोता का कहना है कि लता जी का तार सप्तक स्वर अंतरे में बहुत भाता है इस गाने में। गुलशन बावरा का लिखा गीत, कल्याण जानन जी का संगीत, ये भी एक श्रोता ने लिखा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मेरे देश की धरती टाइमलेस गाना है और इस फिल्म का सबसे अच्छा गाना यही है। और उसके अलावा कस्मे वादे प्यार वफा। एक और श्रोता है कहते हैं कि आज से सावन शुरू हो गया है, कई दिनों से बहुत उमस वाली गर्मी थी और इस समय तेज बारिश हो रही है। और इसके अलावा एक श्रोता कहती हैं कि किसी अपने के लिए की गई वो पवित्र दुआ है जहां खुद को पीछे छोड़कर केवल सामने वाले के जीवन में कोई उजाला और मुस्कान देखना चाहता है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि शायद इबारत देखने के बाद यही गीत पूरा हमारे जहन में चल रहा था और इस गाने का इंतजार वो कर रही थी।

0: इंतजार एक और कार्यक्रम का कीजिएगा, जिसकी सूचना आप देते हैं फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे।
1: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
2: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
1: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 1 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आए हाय
0: भाई, विविध भारती पर सुरीला सफर चल रहा है और हमारे श्रोता किस तरह से अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आज सोनू निगम का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देना चाहते हैं। बिल्कुल दीजिए भाई, और हमने तो इससे पहले वाले यादों की महफिल वाले कार्यक्रम में बाकायदा उन्हें बधाइयां दी हैं, और फनकार आज के फनकार कार्यक्रम का जिक्र भी उन्होंने किया है। और बहुत सारे श्रोता मोहम्मद रफी साहब के बारे में अपनी बातें कह रहे हैं। एक श्रोता है जो कह रही है कि बिल्कुल सुबह से एक गाना जहन पर चढ़ा हुआ है, वो है स्वप्न चरे फूल से मीत चुभे शूल से। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि सुबह से हमारे जहन पर छाया हुआ है वो गाना, चांद आहें भरेगा फूल दिल थाम लेंगे। एक और श्रोता है जो कह रही है कि टेलीपैथी हो गई, हर खुशी हो वहां हमारे जबान पर सुबह से चढ़ा हुआ है। एक और श्रोता कहते हैं कि ये दिल दीवाना है, ये हमारे जहन पर चढ़ा हुआ है। एक श्रोता के जहन पर चढ़ा हुआ है, मेघा छाए आधी रात बैरन बन गई निंदिया। और इस तरह से सभी अपने अपने गाने बता रहे हैं, और आज की इबारत का अगला गाना ये, फिल्म का नाम बताइएगा और साथ में ये भी बताइएगा कि आज की शाम सुनहरी बनाने के लिए आप क्या करने वाले हैं, कहां जाने वाले हैं।

इस गाने को सुनकर एक आह निकल जाती है, आह फिल्म का गाना जिसको सुनकर आह निकल जाती है। एक श्रोता कहते हैं कि भाई कजिन को पढ़ाना है, शाम को मैं कहीं नहीं जाने वाला। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शाम का आनंद लेंगे। एक और श्रोता का कहना है कि शाम की तन्हाई को और गहरा बनाने के लिए समुन्दर का किनारा ही बढ़िया होता है। और शैलेन्द्र के इस गाने पर एक श्रोता जो है बहुत भावुक हो रहे हैं। एक और श्रोता है कहते हैं कि मैंने 6 गाने आज अंदाजा लगाया था, इन 6 गानों का गेस किए थे, 6 गाने शामिल हो चुके हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 7 गानों की लिस्ट में ये 3रा गाना है जो शामिल हुआ है। एक और श्रोता है जिनके शहर में बारिश की सूचना है, इसलिए वो कहीं बाहर नहीं जाने वाली, और जब बारिश होती है और जब कहीं जाने को नहीं होता तो किचन में एक बहुत हल्की चीज बनती है जो तेल के ऊपर तैर जाती है। वो हल्की चीज कौन सी है भाई, जो बारिश के मौसम में हमें जरूर खाना पसंद होता है? जरा बताइएगा, वो हल्की चीजें जो हैं जीवन में बनी रहें, उनकी महक बनी रहे। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि सावन का महीना आज से शुरू हो गया है और सुबह से ही हम सावन के गाने गुनगुना रहे हैं। एक और श्रोता है जो जबलपुर में और कहते हैं कि आज हमारे शहर में मोहम्मद रफी साहब की याद में एक कार्यक्रम है और आज शाम को वो वहां जाने वाले हैं। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैंने जैसे ही सोचा मेरी मम्मी का ये फेवरेट गाना बजने लगा और मैं साथ में गुनगुनाने लगी। आज शाम को सभी दोस्त मिल रहे हैं और तालाब में बोटिंग करने जा रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है और बाकायदा बोटिंग का मौसम है। देखिए भाई, कितने सारे श्रोताओं के जो शाम के प्लान्स हैं वो हमने उजागर कर दिए आज के इस कार्यक्रम के जरिए। तो बताइएगा कि आपका आज की शाम का क्या प्लान है। तब तक ये गाना जो जिंदगी दुनिया और रिश्तों की हकीकत को उजागर करता है, बताइएगा ऐसा कौन सा दोस्त है जिससे आज आपकी बात नहीं हो रही।

बहुत श्रोताओं के कमेंट तना दन चले आ रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं कि उदासी गहरी होती है तो दोस्तों से बात करते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो बस उस दिन एक्टिव होता है जब किसी का जन्मदिन हो। मैंने ऐसे ही एक दिन कहा कि सब कहाँ रहते हो, तो बड़ा ही रूखा सा जवाब आया कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी रहते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है और आप मेरे फेवरेट एंकर बन गए हैं। रफी साहब के बारे में क्या कहूं, वो मेरे फेवरेट थे, फेवरेट हैं और फेवरेट रहेंगे। बहुत ही सही, उन्होंने कहा कि अगर एक भी दिन रफी साहब की आवाज ना सुने तो बहुत खाली सा लगता है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहती है कि जरीना वहाब पर फिल्माया गया ये गाना है सितारा फिल्म का। एक और श्रोता है कहते हैं कि दोस्त होने का क्या फायदा, जिससे बात ना हो दोस्त तो वो होता है जो झगड़ा करने के बाद आकर बोले कि भाई क्या हाल चाल है, चलो बड़े तालाब में घूम कर आते हैं। क्या बात है, प्यारी बात कही है। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि सितारा फिल्म का ये गाना बहुत कम सुनाई देता है, आज आपने सुनवाया, शुक्रिया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आज आपने वो बातें छोड़ दी हैं जो दोस्ती की अनगिनत यादें लेकर आती हैं और अंत में आंखें भिगो देती हैं। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि आपने जो बहुत ही हल्की सी चीज का जिक्र किया है वो पकौड़ी है जो कढ़ाई में तेल के ऊपर तैर जाती है। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जिनका आज पकौड़ी खाने का प्लान है, तो जरा ये बताइए बहुत सारी महिलाएं के भाई पकौड़ी आप ही बनाती हैं या अपने पति से भी बनवाती हैं? किन किन घरों में पति पकौड़ी बनाते हैं जब मौसम बहुत अच्छा होता है? और अब वो गाना आ रहा है जो उदास कर देने वाला है। मुकेश की आवाज में उदास गाने आपको पसंद होते हैं या फिर रोमांटिक गाने, बताइएगा। किस फिल्म का है ये गाना, ये भी बताइएगा।

कार्यक्रम के तकरीबन आखिरी दौर में हम आ पहुंचे हैं। हिमालय की गोद में फिल्म का ये गाना बजा। बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि कढ़ी बनने से पहले ही सारे घर वाले पकौड़े खा लेते हैं और मैं कढ़ी कैंसिल कर देती हूं। आपके घर में भी क्या ऐसा होता है? एक और श्रोता लिखते हैं, बनारस और बारिश पकौड़े का सवाल ही नहीं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मुकेश की दर्द भरी आवाज उन्हें ज्यादा पसंद है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बरसात में पकौड़ी मैं बनाती हूं, मेरे पति चाय भी नहीं बनाते तो पकौड़ी क्या खाक बनाएंगे। अरे रे रे रे, ये तो बड़ी बुरी बात है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े कढ़ाई में तो हल्के होते हैं लेकिन खाने के बाद सेहत के लिए भारी हो जाते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कुछ चीजें तो हम अपनी श्रीमती जी से ही बनवाते हैं क्योंकि उनके हाथ की स्वादिष्ट होती है, तैयारी भले मुझे करनी पड़ती है। और इसके अलावा भाई आज तो पूरा पकौड़ी पुराण शुरू हो गया है। बहुत सारी महिलाएं ये बता रही हैं कि उनके पति को पकौड़े बनाने नहीं आते। अब जरा सोचिए कि ये कितनी गलत बात है। और सीख लीजिए, आज ही के आज सीख लीजिए, आप लोग जिम्मेदारी लीजिए कि आज ही आप सिखाएंगी। और अगला गाना आ रहा है, फिल्म का नाम तो कश्मीर की कली है पर इस गाने के गीतकार कौन है और आप कश्मीर कब गए थे और कश्मीर जाने की सुनहरी याद क्या है बताइए।

ईशोता लिखते हैं कि कश्मीर से याद आया कि हिमाचल प्रदेश में एक गांव का नाम कश्मीर है। अभी कुछ दिन पहले वहां गए थे। ऑस्ट्रेलिया के टूरिस्ट कश्मीर घूमने के इरादे से गूगल मैप के जरिए हिमाचल से इस कश्मीर के गांव में पहुंच गए थे। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि वो 2015 में कश्मीर गए थे और बहुत ही सुनहरी यादें हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि कल्पना से भरी हुई अच्छी मसालेदार पकौड़ी विविध भारती पर सुनने को मिली। और एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि जब भी कश्मीर का ख्याल आया घर में ही कश्मीर का माहौल पाया, पत्नी के हाथों से बने चाय पकौड़े टीवी ने ही कश्मीर से रूबरू करवाया। भाई वाह क्या कहने हैं। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि हम कश्मीर में 3 साल तक रहे हैं और वहां कुछ पढ़ाई की है, युवा उम्र की यादें क्या बात है। एक और श्रोता है जो ये कहती है कि 2014 में अमरनाथ गई थी और हम वहां कश्मीर गए थे और बहुत ही अच्छा लगा था। एक और श्रोता है वो कहते हैं कि भाई पकोड़े नहीं तल सकते तो क्या हुआ, प्याज आलू काटने में और छीलने में मदद तो कर सकते हैं ना, ये भी कम तो नहीं। बहुत सही बात है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि भाई कश्मीर की कली बहुत शानदार, आज का कार्यक्रम बहुत शानदार। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि डॉक्टर ने हमें पकौड़े खाने से मना किया है और आप पकौड़े का नाम ले रहे हैं तो मुंह में पानी आ गया है। इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े वाली कढ़ी बनती है हमारे घर में और सभी सफा चट कर जाते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि मैं रोज अपने घर में काम करता हूं और महिलाओं का सहयोग करता हूं, खाना भी बनाता हूं, कोई व्यंजन ऐसा नहीं है जो मैं नहीं बना सकता। पकौड़ी क्या चीज है, आप पधारिए पनीर के पकौड़े बनाए जाएंगे। भाई वाह क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि भाई आपकी बातों के बाद पकौड़े खाने का मेरा मन कर रहा है और वो भी भुट्टे के पकौड़े। भाई आज ना ये कार्यक्रम सुरीला सफर जो है वो गानों से ज्यादा तो पकौड़ों की बातों का सफर हो गया। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि पकौड़े और पति जी नहीं, वो सिर्फ जायका लेते हैं। इसके अलावा और भी श्रोताओं ने ये सब जिक्र किया है, बहुत शुक्रिया। देखिए जरा सी बात पर कितनी लंबी दास्तान हो गई और कितने सारे श्रोताओं ने कितनी सारी अपनी बातें कहीं। यही तो है विविध भारती के सुरीला सफर कार्यक्रम का मजा कि जिसमें आप हमारे हम सफर बनते हैं और भाई तमाम बातें होती हैं और जिंदगी के अलग अलग मुद्दों पर आप अपनी बातें शेयर करते हैं। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज ताकत का इंजेक्शन लिया, सुरीला सफर कार्यक्रम सुना, परेशानी दूर हो गई, बिस्किट चाय के साथ इस वक्त बिस्किट चाय कार्यक्रम का आनंद ले रहा हूं। मेरे घर में कल भाभी जी ने पकौड़े छाने थे। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि जब आप ये कार्यक्रम करते हैं तो मैं कभी मिस नहीं करती। एक और श्रोता है जो कहते हैं कमबख्त बारिश नहीं हो रही है, पकौड़े खाक बनाए। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हम कश्मीर नहीं गए लेकिन तस्वीरें देखकर संतोष कर लेते हैं। भाई बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में इस तरह से साथ निभाने के लिए। आप बारिश का इंतजार करें और खूब पकौड़े बनाएं, मजे से खाएं, अपनी सेहत का ध्यान रखें। जिंदगी की इस भागदौड़ में जहां कहीं भी रहें विविध भारती के संग बने रहें। सुरीला सफर कार्यक्रम में आपके साथ आपका ये दोस्त यूनुस खान था। इजाजत, नमस्ते।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। आरती आपको भी मेरा नमस्कार।
1: सोनाली जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: क्या हाल चाल है आरती?
1: बिल्कुल ठीक है।
0: और इस
1: बारिश
0: तरह
1: के दिनों में
0: बारिश का आनंद ले रही है।
1: बिल्कुल, बारिश में भीगते हुए आइए भीगते हुए जाइए यही आनंद है।
0: तो बारिश जो है बहुत खूबसूरत ऋतु है, पर उसका आनंद हमें सावधानी के साथ लेना पड़ता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और यहाँ पे तो ऐसा होता है ना कि बारिश का मौसम आया कि पर्यटन का आनंद लेने के लिए हम सभी उमड़ पड़ते हैं।
1: ये तो है, लेकिन ये सोचते नहीं है कि कुछ हमें परेशानी भी हो सकती है या कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए क्योंकि बारिश के जो दिन होते हैं ना थोड़े से खतरनाक होते हैं, क्योंकि ऐसी जगहों पे जब हम पहाड़ों पे या ऐसी जगहों पे जाते हैं ना तो थोड़ी फिसलन पड़ा वो जगह रहता है, तो इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन आपके क्या अनुभव है, हमारी जो भी सखियां हैं और सखा है उनके क्या अनुभव है, वो कभी बारिश के दिनों में घूमने गए हैं तो उनकी क्या यादगार वो किस्सा है जो वो बताना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं,
0: वो हमें बताएं। अपने अनुभव लिखकर भेजें तो हमें ज्यादा मजा आता है।
1: बिल्कुल।
0: कि बारिश में कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए ये तो हम सभी जानते हैं, पर अगर आप कभी घूमने गए थे और फोटो लेने कहीं बहुत दूर चले गए, लंबे चले गए, पैर फिसल गया, या फिर बहुत सावधानी के साथ आपने फोटोज ली है, जो भी अपने अनुभव है वो हमसे
1: बिल्कुल
0: साझा।
1: आपने किस तरह से कौन कौन सी सावधानियां ली जिसके वजह से आपका सफर जो था वो बहुत सुहाना बन गया, तो आप ये सब हमें बताइए। और साथ ही हम क्या बात करने वाले?
0: मुझे कुछ कहना है इसके अंतर्गत, हम थूकने की बुरी आदत कि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो इतनी गंदगी फैलाते हैं। अपने घर में हम बहुत स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, हम अपने घर में वॉश बेसिन में जाके ही थूकते हैं, लेकिन बाहर घर से बाहर निकले कि इधर उधर थूकना शुरू हो जाता है। ये बहुत गंदी आदत है जिससे बहुत सारी बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ जाता है।
1: तो फैलती ही है। साथ ही जो बाहर के पर्यटक बाहर के देशों से आते हैं या घूमने के लिए, वो जब देखते हैं कि सड़कों पे किस तरह से हम लोग इस तरह से गंदगी फैला रहे हैं, तो उससे हमारे जो देश का है ना वो प्रभाव गलत पड़ता है। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम अपने देश का जो अपनी प्रतिष्ठा है उसको बना के रखें।
0: जी, और ये बात आपने कही है ना आरती, तो जब हम ही लोग विदेशों में घूमने जाते हैं तो बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि वहां पर फाइन होता है।
1: तो
0: वहां हम बहुत सावधानी के साथ रहते हैं, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, पर अपने देश में आके सब कुछ भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने देश का गौरव हमें खुद बनाए रखना है। साथ ही कहानी पद्मश्री की, इसके अंतर्गत हम डॉक्टर बुधरी तांती के बारे में जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे साथियों ने भी इस विषय में कमेंट्स लिखना शुरू कर दिया है
1: और
0: उपयुक्त टिप्स।
1: हाँ, वो है जलने कटने पर, कि अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि खाना बनाते समय कभी कुकर छूक गया या इस तरह का तवे से हमारे हाथ जल गया या कुछ कारणों से हाथ जल गया या कट गया, तो हम उस समय क्या चिकित्सा अपना सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं, वो तो हम आपको बताएंगे।
0: जी, और साथ ही आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। हमारे देश में अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है, पर पूरे
1: अंतर्राष्ट्रीय जो
0: पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस आज मनाया जाता है। तो हम अपने सभी साथियों को मित्रता दिवस की बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप भी हमारे मित्र ही हैं ना।
0: जी,
1: सखा है,
0: हमारे साथी है। उनके नाम में ही सखा है, सखी है, तो हमारे तो बहुत करीबी
1: है। हमारा दिवस है, समझ
0: जी, हम सभी का दिवस है।
1: जी बिल्कुल।
0: और आप क्या करें?
1: बिल्कुल, एक गीत सुनते हैं ना।
0: सुन लेते हैं गीत।
2: यूं ही तुम

0: तो जब दोस्ती है तो वहां पर बात करना बहुत जरूरी होता है, है ना?
1: जब हम मिलते रहते हैं ना तो हमारी दोस्ती बनी रहती है, जब हम थोड़ा बहुत मिलना बंद भी कर देते हैं ना फिर भी हमारी दोस्ती बनी रहती है क्योंकि हम दिल से जुड़े होते हैं।
0: हाँ,
1: कुछ रिश्ते होते हैं जो हम ऊपर से अपने साथ लेकर आते हैं, किस जिस घर में हम पैदा होते हैं वो हमारे माता पिता है, भाई बहन है, रिश्तेदार है, लेकिन एक रिश्ता जो होता है ना वो हम खुद बनाते हैं,
0: वो है दोस्ती का रिश्ता।
1: बिल्कुल, दोस्ती का रिश्ता है।
0: और हमारे बीच में, श्रोताओं के बीच में, सखियों के बीच में ये प्यार से रिश्ते की डोर बंधी हुई है।
1: बिल्कुल।
0: तो आज अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है। प्रतिवर्ष 30 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2011 से की थी और इस दिवस का उद्देश्य लोगों, समाज और देश के बीच मित्रता, विश्वास और सद्भाव और शांति को बढ़ावा देना है।
1: बिल्कुल। और मित्रता केवल साथ में घूमने फिरने या हंसी मजाक तक सीमित नहीं होती है, ये एक दूसरे की भावनाओं को समझने, गलतियों पर रोक लगाने, सही मार्ग दिखाने और सफलता पर दिल से खुश होने का नाम है। सच्चा मित्र हमारी कमियों को तो छुपाता नहीं बल्कि उन्हें दूर करने का हमें साहस देता है। वो हमारे मुंह पे बताएगा कि ये कमी है। अगर कोई हमें बताएगा नहीं हमारे अंदर क्या कमी है तो हम उसे दूर कैसे करेंगे? तो वो सच्चा मित्र जो होता है ना वो ये नहीं सोचता कि ये बुरा मान जाएगा, वो सीधे बताता है कि ये तुम्हारी कमी है, इसे तुम्हें दूर करना चाहिए।
0: और जिसके लिए कमी बताई है उसे भी बुरा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर वो सच्चा मित्र नहीं होगा।
1: बिल्कुल। और क्या, क्योंकि आपकी गलतियां बताने वाला कोई मित्र आपके साथ है ये बहुत भाग्य की बात है।
0: जी, एक साथी ने लिखा है आरती कि दोस्त शब्द की उत्पत्ति मूल रूप से फारसी से हुई है जिसे हिंदी भाषा ने इतने प्यार से अपनाया है कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा बन गया है। हिंदी में इसे मित्रता या मैत्री भी कहा जाता है। इस शब्द में एक ठहराव है। यह रिश्ता खून के रिश्तों से अलग होता है क्योंकि इसे हम खुद चुनते हैं। स्वतंत्रता दोस्ती में उम्र, जाति, धर्म या हैसियत की कोई सीमा नहीं होती, ये पूरी तरह स्वतंत्र और शुद्ध भावना है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे साथी हैं जो कहती हैं कि दोस्त वही जो हर हाल में साथ निभाए, बिना कहे दिल की हर बात समझ जाए। और एक और हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाए जाने की शुरुआत साल 1958 में हुई थी और पैराग्वे के डॉक्टर थे रेमोन ऑर्टेमियो ब्राचो ने एक अभियान शुरू किया था जिसका उद्देश्य देशों और समाजों के बीच दोस्ती को बढ़ावा देकर शांति स्थापित करना था। बाद में इस विचार को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली और 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 30 जुलाई को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस घोषित कर दिया।
0: एक साथ ही लिखते हैं, सच्चा मित्र वह है जो हमारी मुस्कान के पीछे दर्द को भी पढ़ ले, बिना कुछ कहे हमारे साथ खड़ा रहे। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन सच्ची दोस्ती की खुशबू कभी नहीं बदलती। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, साथ बिताए अनगिनत पल, दूरियां चाहे कितनी भी बढ़ जाए, यदि दिलों में अपनापन हो तो दोस्ती कभी पुरानी नहीं होती।
1: बिल्कुल। क्या हमारे एक साथी कहते हैं, सोनाली, जब जिंदगी में बहुत बुरा हो जाए, कुछ ना रहे और उस समय दोस्त का हाथ गलबहिया कंधे पर टिके और दोस्त ये कहे कुछ भी नहीं हुआ, बस तू ठीक है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम है ना, सच में बहुत ज्यादा इससे हमें
0: संबल मिलता है।
1: तो हमें लगता है कोई है साथ में,
0: कोई है कि अरे मैं हूं ना तो चिंता क्यों करता है, चिंता क्यों करती है।

0: होते हैं
1: जी,
0: यही बहुत ज्यादा हमारे लिए मायने रखते हैं।
1: एक साथी कहते हैं, मुझे दोस्ती पर बहुत विश्वास है, दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे इंसान खुद चुनता है, ये रिश्ता विश्वास, अपनापन, सम्मान और निस्वार्थ प्रेम के मजबूत नींव पर टिका होता है। जीवन के हर सुख दुख, सफलता असफलता और कठिन समय में सच्चा दोस्त हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। विविध भारती के द्वारा हमें आप जैसी सखियों के साथ कई सारे श्रोता मित्र भी मिले हैं, आप सभी को मित्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।
0: और एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से चुना जाता है, यही रिश्ता मुश्किल वक्त में सहारा बनता है और खुशियों को दोगुना कर देता है। दोस्तों की इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हर साल फ्रेंडशिप डे मनाया जाता है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसे जन्म से नहीं बल्कि दिल से हम चुनते हैं, और ये कहते हैं कि दोस्तों के इसी अनमोल साथ को सम्मान देने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं।
1: एक साथी कहते हैं, दोस्ती जिंदगी का वो संगीत है जो पतझड़ में भी बहार का एहसास कराता है, ये कोई व्यापार नहीं बल्कि एक आत्मिक संबंध है, यही आपकी जिंदगी में एक भी ऐसा दोस्त है जिससे आप बिना झिझक अपने दिल की हर बात साझा कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। बहुत सुंदर बात लिखी है, इसी तरह की बातें हमारे सभी साथियों ने लिखी है।
0: तो एक गीत सुने,
1: सुनते हैं।

0: फ्लोटिंग अवेलेबल है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
2: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती, 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: आरती
1: रूठी नहीं है, बस मैसेज निकाल रहे थे, कमेंट्स निकाल रहे थे, इसलिए बोल रहे थे
0: रूठ गई
1: रूठे नहीं है, क्योंकि बारिश के दिन है, घूमने फिरने का ऐसा मन करता है ना कि चलो इतनी जो बूंदे पड़ेंगी ना चेहरे पे, मुंह पे, हाथ पे, सब बहुत अच्छा लगेगा,
0: वो जो फुहारे आती है ना, पर उसके लिए रिमझिम बारिश चाहिए,
1: तेज नहीं चाहिए, एकदम से भागना ही पड़ जाए, नहीं भैया बहुत हो गया चलो,
0: फिर फिसलने का डर भी है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि अगर तेज दौड़ पड़े बारिश में तो भाई गिर गए तो फिर तो ये बारिश जो है ना हमें बहुत दुखदायक हो जाएगी,
1: पानी भर गया अगर और अब ऐसे ही चल दिए उस पानी भरे में और कुछ पैरों के नीचे आ गया तो ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक बात है, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जब हम बारिश के दिनों में कहीं निकलते हैं तो,
0: और उसमें ना हमारे चप्पल या फुटवेयर जो हम पहनते हैं उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम जो बारिश वाली जो चप्पल होती है ना उसे छींटे भी नहीं उड़ते हैं और वो इतनी लाइट होती है ना कि वो धंसती भी नहीं है जैसे कीचड़ के इसमें, तो चप्पल का बहुत हमें खास ध्यान रखना चाहिए, और खासकर मुंबई की इतनी बारिश होती है यहाँ पर कि यहाँ पर हम बिना छाता लिए घर से बाहर निकल ही नहीं सकते, ऐसा लग रहा है कि खुला है एकदम, मौसम अच्छा है और पता चला 5 मिनट के बाद में झमाझम बारिश शुरू हो गई,
1: इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान रखें अपना, और बारिश का केवल अगर कहा जाए तो बारिश केवल एक ऋतु नहीं है बल्कि प्रकृति का एक उत्सव है, एक उत्सव होता है कि जो धरती को नया जीवन देता है ना, जब बारिश होती है उसके बाद देखो क्या हरी एकदम लाइट हरे, मतलब हल्के हल्के हरे रंग के जो पत्ते होते हैं, नए नए पत्ते निकल आते हैं, मतलब जो सूखी हुई डंडियां, जब सूखे हुए झाड़ जो होते हैं ना धूप की वजह से हो जाते हैं, जब बारिश का मौसम आता है तो एकदम खिल जाते हैं, जैसे
0: हरी हरी कोपले आ जाती है, और जैसे ना हम बाहर घूमने जब जाते हैं ना तब देखते हैं कि ऐसा लगता है कि धरती माता ने हरी रंग की शाल ओढ़ ली है,
1: बिल्कुल इतना अच्छा आंखों को लगता है, ऐसा दिमाग को इतना ज्यादा शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भरा रहता है, और जैसे ही आसमान से बूंदे बरसती है ना तो सूखी धरती जो है वो मुस्कुराने लगती है कि चलो हम
0: बिल्कुल हमारी तरह,
1: बिल्कुल, और पेड़ पौधे हरियाली की नई चादर ओढ़ लेते हैं और नदियां, झरने और पहाड़ जो है वो अपनी पूरी शोभा में नजर आने लगते हैं, ऐसे मनमोहक दृश्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं,
0: और मानसून का मौसम पर्यटन प्रेमियों के लिए किसी सुंदर सपने से कम नहीं होता, आरती, बादलों से घिरी पहाड़ियां, धुंध में लिपटी घाटियां, वर्षा की रिमझिम फुहारे और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू मन को अद्भुत सुकून देती है, और बारिश के दिनों में प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देती है, झरनों का उफान, जंगलों की हरियाली और खेतों की लहलाती फसलें यात्रियों को एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराती है।
1: सच में अब हम अगर हम अपने किसी गाड़ी से जा रहे हैं ना तो या ट्रेन से भी जा रहे हैं तो ये जो दृश्य होते हैं ना ऐसे मनमोहक होते हैं कि ऐसा लगता है कि किसी ने जैसे चित्र उकेर दिए हो धरती पे ना,
0: बहुत सुंदर
1: लगता है, और यही कारण है कि मॉनसून जो पर्यटन है वो आज देश विदेश में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, लोग शहरों की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ सुकून के पल बिताने निकल पड़ते हैं, लेकिन प्रकृति जितनी मोहक होती है उतनी ही संवेदनशील भी, बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद सभी तभी सार्थक होता है जब उसके साथ सावधानी भी जुड़ी हो,
0: और अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं, कार्यक्रम है सखी सहेली और हम बारिश की बातें कर रहे थे आरती,
1: बारिश की बातें कर रहे थे हम और साथ ही तेज, जो जब बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है तो भूस्खलन भी हो जाता है वहां पे कभी कभी ऐसी जगहों पे, जब अचानक बढ़ता जलस्तर और जो फिसलन भरे रास्ते हैं और खराब जो दृश्यता होती है वो यात्रा को जोखिमपूर्ण बना सकते हैं। इसलिए यात्रा पर निकलने से पहले मौसम की जानकारी अवश्य ले लेनी चाहिए पहले से ही, और अगर किसी क्षेत्र में भारी वर्षा या बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है तो यात्रा स्थगित कर देने में ही समझदारी है। यात्रा के दौरान रेनकोट, छाता, वाटरप्रूफ जूते, अतिरिक्त कपड़े, प्राथमिक उपचार की किट, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ कवर जरूर याद करके रख लें।
0: बिल्कुल रखना जरूरी है, अगर हमारा मोबाइल बंद हो गया तो हम तो फिर लोगों के संपर्क से टूट ही जाएंगे ना।
1: और जो प्राथमिक चिकित्सा किट होती ना वो तो बहुत जरूरी है।
0: और पहाड़ी क्षेत्रों में निर्धारित मार्गों पर ही चलना जरूरी है। चेतावनी बोर्डों की अनदेखी तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। नदी, झरने, तेज बहाव वाले स्थानों के अत्यधिक निकट जाने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ क्षणों की लापरवाही जीवन भर का पछतावा बन सकती है। आज के सोशल मीडिया के युग में सुंदर तस्वीरें और रील बनाने का आकर्षण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पर सावधानी में ही बहुत ज्यादा सुरक्षा है।
1: बिल्कुल,
0: तो भले ही आज रील ना बन पाए तो उसमें दुख करने की जरूरत नहीं है,
1: बाद में बना लीजिए अगली बार,
0: क्योंकि जान है तो ये खूबसूरत जहान है।
1: बिल्कुल, और कई बार लोग रोमांच के नाम पर खतरनाक चट्टानों, झरनों और किनारों या उफनती हुई नदियों के पास जाकर सेल्फी और वीडियो बनाने लगते हैं। ऐसे जोखिम केवल कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सबसे खूबसूरत तस्वीर वही है जिसे सुरक्षित घर लौटकर हम मुस्कुराते हुए देख सकते हैं।
0: ये बहुत सही बात आपने कही। और अगर हम सड़क मार्ग से यात्रा कर रहे हैं तो जो भी वाहन हम चला रहे हैं उसकी अच्छी तरह जांच कर लेना चाहिए। टायर है, फिर ब्रेक है, वाइपर है, हेडलाइट पूरी तरह से ठीक होनी चाहिए। धीमी गति से वाहन चलाए, पर्याप्त दूरी बनाकर रखें और जल भराव वाले रास्तों से हमें बचना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में रात के समय अनावश्यक यात्रा न करने से बचना चाहिए और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करना हमें बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है, इसलिए केवल स्वच्छ और ताजा भोजन करें जब भी कहीं आप बाहर जा रहे हैं और पर्याप्त पानी पिएं, और भीगने के बाद जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहने। हम लोग अभी बारिश की भीगने की बातें कर रहे थे तो सूखे कपड़े आप तुरंत पहन लें। अगर छोटे बच्चे या बुजुर्ग साथ में हो तो उनकी सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पर्यटन केवल प्रकृति का आनंद लेने का माध्यम नहीं है बल्कि उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी है।
0: और सबसे जरूरी बात है आरती कि जब भी हम बाहर जाएं स्वच्छता का ध्यान रखें, प्लास्टिक या अन्य कचरा इधर उधर ना फैलाए, स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण का सम्मान करें। ध्यान रहे प्रकृति हमें जितना देती है उसे सुरक्षित रखना भी हमारा दायित्व है। और बारिश का मौसम हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सुंदर अनुभूतियां संतुलन में छिपी होती है। उत्साह और सावधानी, रोमांच और जिम्मेदारी, आनंद और अनुशासन के संतुलन में
1: बिल्कुल
0: होता है।
1: बहुत सही कहा आपने। और जब हम पूरे ध्यान से सावधानियों के साथ करते हैं तो मॉनसून की हर बूंद यादों का मोती बन जाती है और हर सफर जीवन की अनमोल धरोहर बन जाता है, क्योंकि बारिश का असली आनंद तभी है जब यात्रा सुरक्षित हो, प्रकृति है वो सुरक्षित हो और मुस्कान सुरक्षित घर तक लौटे। और सावधानी रखें कि अगर सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी या चेतावनी अगर कहीं दी गई, जारी की गई है तो उस जगह की यात्रा को आप कुछ समय के लिए टाल दीजिए और बाद में जब सही हो जाए तब आप जाइए।
0: और आप क्या करें,
1: एक गीत सुनते हैं
0: गीत।

0: हाँ सुनाली, बारिश के दिनों की जो हम बातें कर रहे हैं ना, तो सखियां सखा जितने भी सब लोग हैं ना, सभी लोग अपने अपने अनुभव बांट रहे हैं, अपनी बातें बता रहे हैं।
1: हमारे एक साथी ने लिखा है कि अभी कल ही मेरी दो छोटी बहनें अपनी सकुशल अमरनाथ यात्रा से आई, मैं स्वास्थ्य कारणों से जा नहीं पाई, लेकिन उनकी काफी कठिन और मुश्किल भरी यात्रा थी। बारिश के कारण कई सारी रुकावटें भी आई, लेकिन सावधानी सीखी गई, उनकी यात्रा आनंददायक और यादगार रही। क्या बात है,
0: बिल्कुल यादगार बन जाती है यात्रा जब हम सावधानी रखते हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं, तो कोई जब परेशानी नहीं होती है तो फिर हम उसका लाभ भी उठा पाते हैं अच्छे से। हमारे एक साथी जो कहते हैं कि कल्याण से पुणे जाते समय यह नजारा बहुत देखने को मिलता है कि बारिश के दिनों में सभी के हाथ में मोबाइल के कैमरे चमकने लगते हैं, क्योंकि बीच रास्ते में घुमावदार रास्ते से ट्रेन का जाना और हरे भरे पहाड़ियां, बादल और कहीं कहीं पहाड़ों से पानी गिरते हुए देखना बड़ा ही सुखद और मनोरम होता है। चलिए आप किसी चीज में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, चलिए आप उसमें से बना सकते हैं वीडियो, लेकिन पैदल जाते समय बहुत ध्यान रखें कि मोबाइल में ही आपका ध्यान ना रहे, सड़क पे भी ध्यान रखिए, जहां पे आप चल रहे हैं उसका भी ध्यान रखिए कि आप कोई पहाड़ी पे तो नहीं है। इस तरह से अपनी सावधानी के साथ में आप करेंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि मानसून के दौरान यात्रा करने के कई अनूठे फायदे और अनुभव है। प्राकृतिक सुंदरता का चरम इस मौसम में पहाड़, जंगल और घाटियां जीवंत हो उठती है। झरने अपने पूरे शबाब पर होते हैं। धुंध और बादलों का खेल दृश्यों को जादुई बना देता है। सस्ता और किफायती सफर, मानसून को पर्यटन का ऑफ सीजन माना जाता है। इस दौरान होटलों, फ्लाइट्स और स्थानीय यात्रा पैकेजों पर भी बहुत सारी छूट होती है। और ये कहते हैं कि इन दिनों मौसम बहुत सुंदर होता है।
0: ये तो है। और एक हमारे साथी हैं जो अभी वहीं पे हैं।

0: मतलब ये घूमने गए हुए हैं तो बारिश में पर्यटन का आनंद और सावधानियां के बारे में बता रहे हैं कि इस बारिश के मौसम में ही दर्शन करने के लिए हम आए हुए हैं जम्मू कश्मीर। इस समय बारिश और पहाड़ों पर लैंडस्लाइड भी हो रही है, यानी भूस्खलन भी हो रहा है, और सावधानी पूर्वक हम इसलिए होटल में रुके हुए हैं और मौसम ठीक होने पर ही हम दर्शन करने जाएंगे। ये वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन, मतलब वो दर्शन करने गए हुए तो वो भी होटल में रुके हुए, तो आप तब तक सावधानी पूर्वक रुके रहिए जब तक मौसम अच्छी तरह से बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता और रास्ता साफ नहीं हो जाता।
1: वैसे हमारे अन्य साथियों ने भी इसी विषय में बातें लिखी हैं। एक साथी लिखते हैं कि बारिश के मौसम में पर्यटन का आनंद प्राकृतिक हरियाली, ठंडी हवा और बहते झरनों का अनुभव कराता है, लेकिन इसके लिए वाटरप्रूफ पैकिंग, सुरक्षित जगहों का चुनाव, खान पान में सावधानी बेहद जरूरी है। बारिश में पर्यटन का आनंद मनमोहक हरियाली, पेड़ पौधे, बाग बगीचे खिल उठते हैं जिससे चारों तरफ ताजगी रहती है, शांत वातावरण, भीड़ भाड़ कम होने से सुकून और शांति मिलती है, और ऐतिहासिक जगह जैसे मांडू है, ओरछा, उदयपुर, ऐसे ऐतिहासिक स्थान बारिश में बेहद खूबसूरत दिखते हैं। जरूरी सावधानियां हमें छाता, रेनकोट, वाटरप्रूफ बैग, हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही कहते हैं कि अच्छी पकड़ वाले स्किड जूते पहने, स्किड एंटी स्किड जूते पहने, और खान पान हमेशा ताजा भोजन खाएं, साफ या उबला पानी पिए। इसी तरह की बातें
0: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि बता रही हैं कि मेरे पति की पोस्टिंग बारिश के मौसम में बांध यानी कि डैम पर होती है। करीब 3-4 साल पहले की बात है, उस समय बांध के आसपास ज्यादा बारिश नहीं हो रही थी। कुछ परिवार वहां पिकनिक मनाने आए हुए थे, मौके पर तैनात गार्ड ने उन्हें चेतावनी भी दी कि वो नदी या पानी के बीच में ना जाएं क्योंकि अचानक पानी बढ़ सकता है, लेकिन वो लोग नहीं माने और बीच में चले गए। तभी ऊपरी क्षेत्र में भारी बारिश होने के कारण बांध का पानी बहुत तेजी से बढ़ने लगा और उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। इस हादसे में 4 लोग बह गए, बहुत बड़ी ये तो दुर्घटना हो गई। उन्होंने बताया कि मतलब बार बार चेतावनी होने के बाद भी उन्होंने नहीं सुना।
1: ये बहुत लोग गलत करते हैं कि हमें अपनी जान से ज्यादा किसी चीज की चिंता नहीं करना चाहिए, उसे हमें बहुत सावधानी से उस वक्त उस सिचुएशन को बहुत सावधानी से हमें बरतना चाहिए।
0: हम क्योंकि हमारे पास हम अपनी जिम्मेदारी तो होती है, साथ में परिवार की है, जो भी लोग हमारे साथ में गए हैं, इतने सारे लोग गए हुए हैं, तो हमें इस चीज को समझना चाहिए, जिम्मेदारी को। और सरकार हमारे भले के लिए ही कहती है, वो चेतावनी जारी करती है कि हम अपनी जान को बचा सके, तो सुरक्षा की दृष्टि से ये सब कहा जाता है, तो उसका पालन जरूर करिए।
1: और सबसे जरूरी बात है कि बारिश में थूकना वगैरह ये सब गंदी आदतों को हमें भूलना चाहिए। वैसे तो कभी भी थूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो आदत है ना, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से घेर सकती है। और अब क्या किया जाए आरती, एक गाना सुन लेते हैं। सुनते हैं गीत।

0: अब हम बात करने जा रहे हैं एक बुरी आदत के बारे में, है ना सोनाली?
1: हमारी सखी ने लिखा है आरती कि जिस जगह को हम अपनी नहीं समझते उसे गंदा करना आसान लगता है, लेकिन शहर भी आखिर हमारा ही घर है, ये विचार नहीं रखते हैं। मैं किसी रिश्तेदार के घर गई थी, 4-5 साल के बच्चे ने दीवार पर थूका, मैंने पलट कर देखा तो बोला चाचा भी तो ऐसा ही करते हैं। हमने तो कुछ कहा नहीं, पर मन में विचार आया कि हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं।
0: बच्चे वही,
1: बहुत सही बात लिखी है कि बच्चों के सामने हम जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही अपनाते हैं, तो हमारी ये कोशिश हो कि थूकना तो है ही नहीं, बिल्कुल जो पीकदान बनी होती है उसी में थूकना है, और अपने घर में जो बेसिन वगैरह होते हैं उसे भी साफ रखना बहुत जरूरी है, थूकने के बाद में उसमें भी पानी से अच्छे से धोना बहुत जरूरी है।
0: और हमारे एक साथी जो लिखते हैं कि बिल्कुल सही कहा आपने, हम विदेशों में एहतियात बरतते हैं कि हम गलती ना करें, पर अपने देश में गलती को बार बार करते हैं। मैंने किसी से सुना कि खाड़ी देशों में अगर आप सड़कों पर जहां तहां थूकते हुए पाए गए तो उनके पास स्प्रे जैसी कुछ चीज होती है जिसे वो आपके मुंह में स्प्रे कर देते हैं, जिससे आपके मुंह में सूजन हो जाती है और आपका मुंह सूज जाता है, यही सजा दी जाती है। तो ये इस तरीके की चीजें अब हमें तो नहीं पता है, खैर ये बता रही है इस तरीके की चीज, लेकिन ये जो मैसेज है कि भाई थूकना बहुत गलत है तो वो तो आप कहीं भी मत करिए, क्योंकि जो सड़क भी है इसके भी ये भी हमारी ही है, समझिए सरकार की नहीं, ये जो हम टैक्स देते हैं उससे उसको ठीक किया जाता है। तो ये इस तरीके की चीजों को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस तरह से हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे
1: ही अपने घर के बाहर भी स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि इंदौर शहर में कोई व्यक्ति थूकते पकड़ा जाता है तो उसे 500 रूपये का जुर्माना लग जाता है।
0: अरे
1: तो ये तो बहुत सही है,
0: इसी तरीके की जब इस तरह की जब सजा मिलती है या इस तरह की चीजें जब निर्णय दिए जाते हैं ना कि आपको ऐसे देना है, पैसे देने, जुर्माना देना है, तब हम उस चीज को थोड़ा सा सोच के करते हैं कि नहीं नहीं यहाँ पे हमें पैसे देने पड़ जाएंगे इसलिए ना करें। तो ऐसे इस तरह से होना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि पान मसाला और गुटखा खाने की लत के कारण लोग बार बार कहीं भी थूकने पर मजबूर हो जाते हैं, और मानसिकता, सफाई के प्रति लापरवाही और सामाजिक आचार संहिता का अभाव इस आदत को और भी बढ़ावा देता है।
0: एक साथी लिखते हैं कि अपने थूकने वाले लोग ये नहीं देखते कि उनके पीछे और भी लोग आ रहे हैं, और ये बहुत ही गंदी आदत है, इसके लिए इस चीज को नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसे बस किसी ऑटो में बैठे या बस में बैठे तो हम मुंह निकाला थूक दिया, क्योंकि नीचे और जो चल रही सड़क पे चल रहे हैं लोग उनपे भी कभी कभी उनके कपड़ों पे गिर जाता है कभी कभी इस तरह, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम इस तरह से नहीं करना
1: चाहिए। कई बार जब हम ऑटो रिक्शा में बैठते हैं तब भी ऑटो वाले जो भैया होते हैं वो हालांकि दिन भर वो काम करते रहते हैं पर जरूरी नहीं वो चलाते चलाते ऐसे थूक देते हैं, तेज हवा आई तो उसका छींटा जो है पीछे वाले लोगों पर आ सकता है।
0: बिल्कुल।
1: और एक साथी ने लिखा है कि खुले में थूकने से टीबी और अन्य सांस संबंधी संक्रमण हवा और सतह के जरिए तेजी से फैलते हैं, गंदगी से गलियां, दीवारें और सार्वजनिक स्थल बदरंग और गंदे हो जाते हैं जो शहर की खूबसूरती को बिगाड़ते हैं, और साथ ही खुद का स्वास्थ्य भी खराब होता है कि हवा से जो जीवाणु है कीटाणु है वो हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और हम भी बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए हमें थूकने की आदत को तो अलविदा कहना ही चाहिए।
0: और एक साथी जो लिखते हैं कि एक सभ्य इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी आदतों से होती है, जब कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे कहीं भी थूक देता है तो उसे देखकर मन में खिन्नता होना स्वाभाविक है, तो ऐसी आदतें न केवल वातावरण को अस्वच्छ बनाती हैं बल्कि कई बीमारियां फैलने का भी कारण बनती हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए हमें।
1: एक साथी ने लिखा है कि मेरी शॉप के आगे जब लोग थूकते हैं तो मैंने साफ शब्दों में मना करता हूं, ऐसी जगह मक्खी मच्छर होते हैं जो बीमारी का कारण बनता है, सार्वजनिक स्थानों पर थूकना एक कानूनी अपराध है, और इन्होंने कहा है कि इस तरह से ये दंड जो है ये तो लोगों को डराने के लिए एक आदत लगाने के लिए दंड है, पर हमें खुद से ही इन आदतों को अपनाना चाहिए कि इसके साथ सामने वाले के साथ साथ हमारा भी इसमें फायदा ही होता है।
0: एक मैं साथी जो लिखते हैं कि एक गुजरात के बड़ौदा जो अड्डा है वहां पर पान मसाला तंबाकू पाए जाने पर जुर्माना लगता है,

0: और मेरे सामने एक बार बस में मैं जब बस अड्डे पर खड़ा था तो एक भाई ने तंबाकू की पूड़ी निकाली और दोनों हाथों से उसको बना रहे थे, तो सिक्योरिटी वाले आए और 200 रुपए का दंड किया का जुर्माना भी लगाया और तंबाकू जो बना रहे थे वो पूड़ी उसको भी ले गए। और स्वच्छता का अभियान और स्वस्थ रहने का अभियान चलाया जाता है, तो इस तरीके की जो चीजें वो करते रहना चाहिए जिससे कि स्वच्छता बनी रहे।
1: और अब गीत सुन
0: लेते हैं।

0: हाँ सोनाली, अब हम बात करेंगे कुछ उपयोगी टिप्स के बारे में, है ना। तो हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि रसोई में काम करते समय तेल की छींटे उंगलियों और हाथों में लग जाते हैं, जैसे कि अगर आपको लग जाए तो आप पहले ठंडे पानी के नीचे रखिए अपने हाथ को और वहां पर मलाई से कुछ दही लगा लीजिए, कुछ ठंडी चीज लगा लीजिए, ये जलन को भी शांत कर देता है और फफोले भी नहीं पड़ते हैं। और अधिक जल जाए तब तो फिर मरहम और डॉक्टर, पहले तो डॉक्टर से ही सलाह लेनी पड़ती है। और हल्की फुल्की जलने पर ठंडा दूध भी बहुत फायदेमंद होता है। तो कभी कभी तवे पर उंगलियां सट जाती हैं या पकौड़ियां तलते समय उंगलियां तेल में टच कर जाती हैं, तो ऐसे में आप ठंडा दूध या थोड़ी देर में पानी में रखने पर भी जलन खत्म हो जाएगी।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि किचन में जो हम हाथ में अगर कट जाता है तो उसमें तुरंत ही सरसों का तेल लगा लिया जाए तो खून रुक जाता है और एंटीसेप्टिक का काम करता है, और उसी जगह पर चीनी लगा ले तो खून तुरंत रुक जाता है। ये काम मैंने बच्चों पर खूब आजमाया है, बच्चे अक्सर गिर जाते थे, होंठ कट जाता था तो चीनी लगा देती थी, जलने पर तो तुरंत उस जगह पर ठंडा पानी या बर्फ या टूथपेस्ट लगाना चाहिए, हो सके तो अगर ज्यादा चोट है तो डॉक्टर के पास जाना जरूरी है।
0: ज्यादा चोट है तो आप अपना इलाज बिल्कुल भी ना करें,
1: बिल्कुल
0: सीधे डॉक्टर के पास जाएं
1: जी।
0: और छोटे मोटे चीजों में ही है आप इसको अपनाएं। और एक हमारे साथी जो लिखती है कि और कुछ अगर पास में नहीं है तो आप बोरो प्लस भी लगा सकते हैं, वैसे आप कोई चीज तरह की कोई चीज आप लगा सकते हैं। और साथ ही आप कोई घरेलू जैसे कि आलू वगैरह है इनको काट के लगा सकते हैं।
1: एक ने लिखा है कि अगर उंगली जल गई है तो हल्की हल्की सिकाई करके उसे ठीक कर सकते हैं, पानी में उंगली डाल दी तो फफोला पड़ना अनिवार्य है, किंतु यदि जले हुए त्वचा का क्षेत्रफल ज्यादा है तो उचित उपचार की आवश्यकता है। और इन्होंने वही कहा है कि बर्फ से सिकाई करना है, उसके बाद में बहते हुए पानी के नीचे हाथ धोना है।

0: उसके बाद में सबसे पहले है कि उसको धोना जरूरी है कि उसमें जो कुछ कीटाणु अगर लग गए हैं तो उसे बह जाने देना है और उसके बाद में साफ पट्टी चिपका ले। इसके बाद में इसी तरह का उन्होंने लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि ठंडे पानी में हाथ डालना चाहिए अगर जल गया है तो, सीधी बर्फ ना लगाए और घाव सूजने से पहले जली हुई जगह से अंगूठी या तंग कपड़े या धीरे से हटा दे। और उन्होंने कहा कि छाले जो आ जाते हैं ना, उंगलियों में पड़ जाते हैं छाले, तो उन्हें फोड़ना नहीं है छालों को, क्योंकि उससे बैक्टीरिया का संक्रमण बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, सबसे अच्छा उपाय है कि आप उसको बर्फ के पानी में, ठंडे ठंडे पानी में अपने हाथ को थोड़ी देर के लिए रखिए बहते पानी में, तो उससे रहता है ना कि ठंडक पड़ती है और जलन वो शांत हो जाती है। लेकिन अगर अपनी तरफ से कोई अगर बहुत ज्यादा जल गया तो अपनी तरफ से कुछ उसमें मत लगाइए, आप सीधे डॉक्टर को दिखाइए तो वो उसका बेहतर तरीके से इलाज कर सकते हैं।
0: और आप क्या करें,
1: ये गीत सुनते हैं।
0: सुनते हैं गीत।
2: आयले चुनमुन चुनमुन, झांझरे रुंचुन रुंच,

0: तो आरती सखियों के हमारे श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा। सभी साथियों को हम शुक्रिया कहते हैं और लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली।